0: कुछ बोलोगे भी? कैसे गाइड हो?
1: मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर।
0: जानते हो क्यों?
1: क्यों?